0: जाएंगे।
1: That's the next caller of the show. जी गुरु छे नेक्स्ट कलर मिस्टर है सोकता अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम
2: वालेकुम। सलाम
1: जी कुर्बान सो कैसे खबर के किम जना अल्लाह पाक शेगड़ी दी नुमार होता खजान नुमायो जली ब्याह वर्ष या
2: इरफान अल्लाह
1: ओ इरफान भाई सड़ाई माश है चरंगे सही है
2: हाँ जी
1: यो जहान मानना इरफान जद दुआ सलाम टेम रो सा कुर्बान देर काम हुई जी वालेकुम सलाम
2: अब्दुल समद का मैं सलाम दा
1: साहे सही का प्रोग्राम उस रवोर वे खाना अब्दुल रजीक अब्दुल समद देर केच के सलमुना इरफान वाला शाह देर केच ये गए हाँ जी
2: आओ करा
1: सही ओके जी सही था इरफान थैंक यू सो मच
2: बुल्ला तो मैं सलाम दा
1: वालेकुम सलाम जी ओके जी थैंक यू सो वेरी मच खुशोल और तो उसे कदरमानों से इज्जतमानों से थैंक यू सो फॉर कॉलिंग आहा
3: ओ मुंगा खटकी उपीला
1: वाह जी वाह।

सदा सड़की सरा तुम्हारा सदा सड़की सरा उसको के ना बस प्रोग्राम उर वे मानती ना माजे जनो खले नो सदा सड़की तवे के ना से साई तो सरमीरी मानस मा के ना।

वेलकम टू द शो, सो इट्स वेरी नाइस एंड गुड बी जेम आर जेम डी एंड ऑल लिसनर सलाउद्दीन फ्रॉम वन सुरानी वो गुलवरी नजर दे गुलनो और उरना सेरना कैसे लिख ली दी देर से तमन्ना आयो जहान में सलाउद्दीन बन्ना देर से तमन्ना सलाउद्दीन बिखी बिखी बिखी हदीना लिख ली दी कना भाई सलाम भाई जान सर भी सही थी ग्रवजीरी भाई जान बाबा कोरता रगला इधर शोरी ओहो बाबा जो शोरी ना बाबा जीता दे कोरता मना देर देर हर कलाई वेलकम ये ओ नमाय रोशन कना से नम को उगली कना साइडो मनना देखे मनना देखे

अमृता शो ऑल फ्रेंड को वेलकम एंड दिल वाला सलाम अलैकुम सलाम मानना शुक्रिया सलाम अलैकुम मसूद भाई आरिशा हटक में सख्ती नजर थी ना शो दे और क्यूट और शांत में सलाम रखो वालेकुम सलाम शुक्रिया यो जहान मानना बेहद बेहद मानना ਬਹਿਦਾ ਬਹਿਦਾ ਮਨਣਾ ਅੱਛਾ।

0: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: د ویختو مسلو سره تر مخ خلکو دپاره خوشحالۍ زیری کچېرې ستاسو ویختو مسلو سره تر مخ یې امیسه شوې یو ځل لږ شاین آیل اینډ فریکشن شیمپو استعمال کړئ او د ویښتو ټولې مسې ختمې کړئ. کچېرې تاسو ویښته غورځېږي، دوسرې کېږي او نه اوږدېږي یا بې وخته سپینېږي، نو فوراً فریکشن آیل اینډ شیمپو انتخاب وکړئ. صرف د یوه هفته

करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है। ओडीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर

once again 就是秦汉娜 sweet by 苍蝇啊，贝勒。होंठों पे मुस्कुराहट थी लेकिन ईमान का मिलता, अब होंठों पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफिकत है. Deep words, deep lines. भाई सिमी क्यों जोश यहाँ स्वीट भाई जाने वाट से पहले किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता सही खबर है दा. सलाम आई एम खामोश तनहा जी. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. थैंक यू सो वेरी मच खामोश तनहा द मैसेज खबल है. थैंक यू सो वेरी मच. और क्यों जोश यहाँ तो सका मैसेजेस कड़ी थे यो जहान मनना है. थैंक यू सो वेरी मच. भाई सिमी क्यों जोश यहाँ स्वीट भाई जाने कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है. दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं. दगा खबर है, दगा खबर है. मुझे पयावल है कुछ सच करे कैप चला मैसेज में कड़े देगा ना. और बिल्कुल ची विनय सॉरी रिश्ते ची दी कहना दा सिर्फ दे विनय ने दी कहना रिश्ते ची दी दा ची दी बिल्कुल सरा सरा एहसास ची दा बाकी अगर जरूरी है दे खून ब्लड रिलेशन ना अलावा ची दा कहना अगर डेरे रिश्ते ची दी अगर दुनिया के मौजूद दिन एहसास ची दा अगर डेर जरूरी दा यो जहान मनना डेर चला मैसेज जी.

여기지 넥스 바이 팀 이끄르지 하나 마이 스위트 바이 자니 Life is so beautiful. One day, one hour, one minute will never come again. So just forget all acha problems and be happy. Dear actually khabar hai ji. Dear actually khabar hai. Next bhai ji, yo jahan mein hai, kyun jahan bhai ji mein, kyun jahan sweet bhai jani waji wa, mashallah show and topic dono bahut well done hai. बिल्कुल गुलगुल एंड बुलबुल की चॉकलेट वाइस की तरह यू जहान मना थैंक यू सो वेरी मच भाई जी मैं क्यों जी हाँ स्वीट भाई जाने जैसे अल्लाह बुलंद करना चाहे अच्छा जैसे अल्लाह बुलंद करना चाहे उससे कौन गिरा सकता है बिल्कुल ची देखे शक नष्टा अल्लाह पाक ची चाहता इज्जत वेर के भी और अल्लाह पाक ची चाहता बुलंद है वेर कही जी इंसान सशायदा इंसान सवाजता है अगर बिल्कुल अरवा चाहिए भाई जी मैं क्यों जी हाँ स्वीट भाई जाने قاتل تکبر مقتول ہم اچھا اوکے جی

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तास औरे रेडियो

वाह वाह वाह वाह जबरदस्त बेहतरीन गजल और मुतर कड़ा डेर खान लो उम्मीद लरा चितु से खान करना है सही जनाब खुशी पा कंपनी शिफा स्किन पार्लर दिमाग दे पुरा दिमाग दे सरमन दे पुरा दिपशे दे लुसे दे डायरेक्ट स्पिना वाले दे पुरा खुशी पा कंपनी शिफा स्किन पार्लर इस्तेमाल करो माड़ा ए, चेसाई वेली दी का ना हकीकत ही।

Okay, जी वही छे कहना अरे बात हटा के मैं वन सेकेंड अच्छा वही छे राज भाई तो ना मीमा गिला दे जी ओ जी गिले रोक ले अल्लाह खैर वकी

नेक्स्ट भाई का नाम है मिक्रोटी शाह रोशिहान स्वीट भाई जानी जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है जब भी लगती है या तो किसी की असलियत देखती है दिख जाती है या कुछ ना कुछ सिखा देती है छी बखो जबरदस्त खबर है जी बिल्कुल दगा से दा यो जहान मनना नेक्स्ट टाइम मेक यू जहान स्वीट बजानी फॉर यू बहस है लोग यहाँ बला सोच के करना इस दौर में लोगों से वफा सोच के करना एक बार रोटो तो मना तुम न सकोगे हम जैसे वफादार को खफा सोच के करना चाहिए जैसे जहान मनना भाई जी सलाम राज भाई और गाना खोर तफले का कहना कि मैं गाना धागा दो प्लीज वाला ऐसा प्लेश्वर शाह पता नहीं चाहिए कि मैं प्लेश्वर

थैंक यू टू शिहान स्वीट भाई जानी। दो SMS दे प्रेज दादा, फास्ट SMS के बाद जो रह गए वेलकम फरिश्ते थे और शाह यार मानी थे ना उपति के जैसा या नया लोड़िया दल तक यो बना उपति के जी इंशाल्लाह। भाई चीज सब आप पेशावर से रवान है कहना छे राज भैया गुड नाइट हाई फाल्कन बख्तन ओके छे रोजाना गुड नाइट छो सफर दे बखैर जी यो जहान मनना है फाल्कन और सॉरी फाल्कन बख्तन और हाय हाय नमा खुदा का खुशात है बख्तन और यो जहान मन।

ये लम्हे यूं ही गुजर जाएंगे, शायद हम दोस्त यूं ही बिछड़ जाएंगे। नाराज न होना हमारी शरारतों से, यही तो पल है जो कल याद आएंगे। देर सा ये जहान मनना है। क्यों तो शिखानी स्वीट सिस्टर जानी, थैंक यू सो वेरी मच। वही छे